0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in Multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mong i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφος σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in Multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗? 联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满 18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio.

0: कलयुग विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, 7 जून 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पीएम मोदी के आर्थिक सुधार देश की समृद्धि को लगातार दे रहे हैं बढ़ावा, अमित शाह का बड़ा बयान। वैश्विक मंच पर भारतीय रेल का डंका, भारी माल ढुलाई प्रणालियों वाले विशिष्ट देशों के क्लब में शामिल हुआ भारत। पिछले 10 साल में बढ़ा हरित आवरण और वन्य जीव संरक्षण में मिली सफलता, पीएम मोदी का बड़ा बयान। संकट की घड़ी में भारत ने दिया साथ, अब ईरानी राजदूत ने जताया आभार। सूर्य कुमार यादव की कुर्सी गई, श्रेयस अय्यर होंगे भारत के नए T20 कप्तान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2026 में देश द्वारा अर्ज की गई 7.7% GDP वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सुधार आर्थिक समृद्धि को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत भारी माल ढुलाई रेल प्रणालियों का संचालन करने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारत माल ढुलाई संचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में अग्रसर है। यह बात DFCCIL के प्रबंधक निदेशक प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को कहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार और लोगों के साझा प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण देश के हरित आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा कई वन्य जीव प्रजातियों की आबादी में भी सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारत और भारतीय जनता द्वारा दिखाई गई संवेदना एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भारत के लोगों ने ईरान के साथ मजबूती से खड़े होकर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को प्रदर्शित किया। भारत का नया T20 कप्तान कौन होगा, इस पर सस्पेंस अब समाप्त हो गया है। इस महीने 26 जून से आयरलैंड और जुलाई से इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। अक्षर पटेल की जगह अब उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। सूर्य को हटाने और श्रेयस को नया कप्तान बनाने को लेकर सहमति बन चुकी है। बैठक में सिर्फ इस पर मुहर लगेगी कि इसके बाद इस बारे में मुख्य चयनकर्ता बाकी चयनकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कोच गौतम गंभीर संजू सैमसन को कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन BCCI और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर इससे सहमत नहीं थे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,42,279 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 95.36 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67.17 रुपये। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
1: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज के साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव, ऋचा और सुनील। आज का टॉपिक और गेस्ट जो है आज का है अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी पे करेंगे, विशेषज्ञ सुरुचि थेपलियाल मंजू मित्तल और स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया रफ़ी शो करेंगे और ट्रिब्यूट टू डॉक्टर बशीर बद्र और सॉन्ग ट्रिब्यूट टू सुमन कल्याणपुर। अब आज का प्रोग्राम शुरू करने के पहले सुनिए रिचा जी से आज का विचार।
0: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में जैसा सुनील जी ने बताया कि हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं महान सिंगर सुमन कल्याणपुर जी को और डॉक्टर बशीर बद्र जो सदी के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। सुमन जी 31 मई को हमारे साथ नहीं रहीं, अलविदा कह दिया उन्होंने और डॉक्टर बशीर बद्र की जीवन यात्रा समाप्त हुई 28 मई 2026 को। तो आज के विचार में हमने डॉक्टर बशीर बद्र का ही एक शेर सोचा जो आप लोग को सुनाऊं, जो हमें जीवन में राह दिखाता है। तो बशीर बद्र जी कहते हैं, अंधेरी रात को मैं रोज़ ए रोशन नहीं बदलता, अंधेरी रात को मैं रोज़ ए रोशन से नहीं बदलता, मैं अपनी राह खुद चुनता हूँ, मौसम से नहीं बदलता। तो इसका अर्थ ये हुआ, बशीर बद्र साहब का कहना है कि जीवन में विनम्रता और सहिष्णुता और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता ही सच्ची इंसानियत की पहचान है। आइए सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में एक भजन सुनते हैं।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर
2: श्रोताओं, आज हम भारतीय फिल्म संगीत की एक अमूल्य धरोहर, महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 28 जनवरी 1937 को ढाका, तत्कालीन ब्रिटिश भारत में जन्मी सुमन जी ने अपनी मधुर, कोमल और भावपूर्ण आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। उन्होंने हिंदी, मराठी सहित अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाए और अपने सुरों से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय संगीत जगत में एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। कितने ही अनगिनत चर्चित गीत उन्होंने गाए जो हमारे दिल में घर कर गए। और देखिए, संजोग की बात, पिछले सप्ताह हमने उनके जीवन और संगीत को दर्पण रेडियो पर सेलिब्रेट किया था। क्या पता था कि इस सप्ताह उन्हें श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। दर्पण हिंदी रेडियो परिवार की ओर से स्वर साधिका सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। स्वर भले ही मौन हो गया हो, लेकिन उनके गीत सदैव गूंजते रहेंगे। आज के सभी गीत हम उन्हीं की याद में प्ले करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमारे दर्पण के ही टीम के श्री पैट वाराणसी जी ने बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, तो वो हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। पैट जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज़, हाँ अब बोलिए।
3: आपको,
2: हाँ हाँ, अब सुनाई दे रहा है।
3: अच्छा,
2: तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पिछले सप्ताह कितना ही खूबसूरत आपने प्रोग्राम फीचर तैयार किया था सुमन कल्याण जी के ऊपर, उनकी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे थे और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये सप्ताह जो है हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो इसको कहते हैं नियति। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या जो है ना, क्या भावनाएँ हैं, कैसे आप प्रदर्शित करना चाहेंगे?
3: हाँ देखिए, जैसे आपने बताया, संयोग की बात है
2: जी,
3: यू नो, एंड इट इज विद मिक्स्ड इमोशंस यू नो दैट आई टेक दिस न्यूज। मैंने पढ़ा था वो प्रोग्राम के बाद जब ये हुआ
2: जी,
3: तो मिक्स्ड इमोशंस ये है कि हैप्पी दैट शी री सेलिब्रेटेड हर लाइफ एंड हर कंट्रीब्यूशंस टू म्यूजिक। उनके योगदान को हमने काफी जश्न मनाए और देयर वाज अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम लिसनर्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। काफी लोगों को, जैसे हमने बताया था, सुमन कल्याणपुर के बारे में पता नहीं था इतना। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कुड सेलिब्रेट, आल्सो हैप्पी दैट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हर 3 years बैक एंड शी यू नो शी ऑन हर लास्ट जर्नी शी वाज ड्रेप्ड इन द नेशनल कलर्स बिकॉज शी वाज अ पद्म भूषण अवॉर्डी। सो दैट इज द हैप्पी साइड। सैड that we lost, you know, yet another aur ek jisko bolte
2: dikkat sitara kalakar sitara chala gaya
3: kholiye
2: ji
3: kholiye and you know wo bahut dukhi baat hai
2: ji
3: लेकिन देखिए जैसे उनकी गाना है रहे न रहे हम
2: जी
3: मैं क्या करेंगे, आई थिंक इट्स वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेशन. सुमन जी की म्यूजिक का जो महक का खुशबू जो है वो सदा बहार सदा रहेगा. दैट इज हाउ आई फील, यू नो, her music is going to keep us all happy and her memories will stay with us. जी. Thanks, Rita ji.
2: Thank you so much. और दर्पण परिवार की ओर से सुमन जी को श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनका ही एक गीत, बहुत ही सुंदर सा. धन्यवाद पैट जी.

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सो श्रोताओं, आज हम दो टिकट ला रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है, केदारनाथ प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा दिल सीजन 2। सो बहुत लोगों को पता होगा जो ऑलरेडी सीजन 1 अटेंड कर चुके होंगे, और ये बहुत ही सुंदर शो है। इसके लिए 2 टिकट हम देंगे, और आप इस बेसिस पे कि भाई जिनका अच्छा कमेंट आएगा हमारे
3: आज के प्रोग्राम के बारे में, सुनील जी,
2: प्रोग्राम के बारे में, और जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे हम जो है 2 टिकट्स देंगे।
3: तो एक व्यक्ति को एक टिकट मिलेगा।
2: हाँ,
3: और किस दिन हो रहा है ये प्रोग्राम?
2: ये प्रोग्राम डिटेल्स तो मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन
3: चलिए हम डिटेल्स अभी आपको बता देंगे। लेकिन अभी जो है हम अपना प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम जो है बहुत ही रोचक इंटरव्यू आपके लिए ले आ रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा आज का अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष के बारे में हम सब जानते हैं कि जो है अंकों का कितना उपयोग है हमारे जीवन में, और कितना हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, चाहे वो बर्थ से रिलेटेड हो। तो इससे मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम आज एक अंक ज्योतिष विशेषज्ञ को लेकर आए हैं, जिनका नाम है सुरुचि थेलपियाल। मैंने आपका नाम सही पुकारा? तो उनसे आपको मिलाते हैं और बातचीत करेंगे हम अंक ज्योतिष से। ये विशेषज्ञ हैं, ये टैरो रीडर भी हैं, अंक ज्योतिष भी करती हैं, ज्योतिष के बारे में भी जानती हैं, बहुत कुछ इनको जानकारी है, क्लासेस भी लेती हैं। तो सबसे पहले क्यों ना इनके मुख से ही सुने कि सुरुचि जी क्या हैं, किस तरह के काम करती हैं, और कैसे जो है इनकी रुचि इन विषयों में हुई। तो सुरुचि जी, आपका दर्पण रेडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी आ चुकी हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की थी, और आज मुझे लगा कि क्यों ना श्रोताओं के बारे में, जो 1 से 9 मूलांक होते हैं, उनके बारे में थोड़ा श्रोताओं को बताएं और हल्की सी जानकारी दें कि क्या है अंक ज्योतिष। तो सबसे पहले अपने बारे में श्रोताओं को बताइए कि आप कहाँ से हैं और किन किन विषयों पे आप जो है वो काम करती हैं।
4: धन्यवाद ऋचा जी दर्पण स्टूडियो में बुलाने के लिए, एंड गुड मॉर्निंग ऑल श्रोताओं को। आज मैं सुरुचि थेलपियाल आपको न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या है अंक ज्योतिष और मैं कैसे पहुंची यहाँ।
3: इसके अलावा भी आप क्या क्या विषयों पे काम करती हैं?
4: एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ये रिसर्च कर रही थी। पहले मैंने भी बहुत लोगों की तरह अलग अलग फील्ड में गई, जैसे टैरो रीडर
3: जी,
4: और भी चीज़ें जैसे कि रेकी, काफ़ी चीज़ें करी मैंने मोडेलिटीज़। पर जब से मैं अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में आई, तब से मुझे डिफरेंस पता चला कि ओरिजिनल चीज़ क्या है, जो भी हमारे प्रिडिक्शन का मेथड्स हैं वो क्या हैं, और क्या सही में साइंटिफिकली वर्क करते हैं।
3: अच्छा।
4: और क्या चीज़ ऐसी है जो कि इंसान को गुमराह करती है
3: जी।
4: तो हमें उस पर हमें नहीं पढ़ना कि किस चीज़ से हमें मतलब एक्चुअली ज्योतिष क्या है। ये जो आधी से ज़्यादा ज्योतिष है वो यूट्यूब या सोशल मीडिया के इसको खराब कर चुके हैं, और एक ये डर का एक माध्यम बन चुका है।
3: हाँ, तो आप बताइए कि क्या परिभाषा है, क्या है अंक ज्योतिष?
4: हाँ जी, तो जैसे कि हम आपने ज्योतिष की बात की, तो ज्योति प्लस ईश मतलब ज्योतिष। ज्योति मीन्स ज्योति, ईश्वर की जो ज्योति है, ईश्वरीय ज्ञान, उसको हम ज्योतिष कहते हैं। बट जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्टर की लॉजी मीन्स एस्टर एंड लॉजी से बना है। एस्टर मीन्स तारों की, लॉजी मीन्स लॉजिक।
3: अच्छा।
4: या जो ज्ञान है, तो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में यहीं पर डिफ्रेंस आ जाता है।
3: अच्छा।
4: कि इसमें इंट्यूशन भी वर्क करती है और एस्ट्रोलॉजी में केवल हम एस्टर के नॉलेज से। अब जहाँ तक अंक ज्योतिष की बात आती है, अंक ज्योतिष मीन्स जो नंबर की ज्योतिष है, नंबर के बारे में अध्ययन करने को ही अंक ज्योतिष कहते हैं। और जो ये न्यूमरोलॉजी है, जैसे कि न्यूमरो से आपको पता ही चल गया है, नंबर्स एंड लॉजी लॉजिक, नंबर्स का क्या लॉजिक है, ये हम अंक ज्योतिष के माध्यम
3: तो
4: से।
3: एक सवाल उठता है सुरुचि जी कि मूलांक जिसे हम बर्थ नंबर कहते हैं और भाग्यांक जो जिसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्या अंतर है इनमें?
4: हाँ जी, मूलांक होता है मूल अंक जिस डेट को हम पैदा हुए हैं। अच्छा। यानी बर्थ का जो डेट है उसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो हमारा मूलांक होता है।
3: जैसे उदाहरण
4: जैसे कि हम 1, 2, 3 या 10, 15 इस डेट को पैदा हुए हैं, तो अगर हम सिंगल नंबर है कि 1, 2, 3 तो वो हमारा मूलांक हुआ। अगर हमारा 15, 16, 17 को पैदा हुए हैं, तो जैसे 15 है तो 1+5 करके 6
3: उसको जोड़ देंगे,
4: वो सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, वो हमारा मूलांक हुआ। एंड भाग्यांक हुआ हमारा पूरा जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, जैसे कि 15 सितंबर 1980 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो हम पूरा टोटल करेंगे 1+5+9+1+9 8 0, तो इन सब का टोटल जो है वो भाग्यांक होता है जिसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं।
3: और मान लीजिए 20 नंबर आ गया वो,
4: हाँ, तो सिंगल डिजिट पे लाएंगे
3: तो उसको दो नंबर,
4: हाँ, दो नंबर। पर ये डिफरेंस है कि जो मूलांक है वो हमारा 30 की एज तक काम करता है।
3: अच्छा।
4: और जो भाग्यांक है वो हमारे भाग्य को बताता है, मींस जो हमारी लाइफ में इवेंट होते हैं उसकी प्रिडिक्शन के काम आता है।
3: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि दोनों में फर्क है।
4: हाँ जी,
3: तो मतलब 30 साल से जो ऊपर है उनको जो है अपना पूरा टोटल करना चाहिए।
4: पूरा टोटल तो दोनों में ही करना चाहिए, पर नेचर का पता हमें मूलांक से चलता है। जब हम पैदा हुए हैं तब से हमारा नेचर डिसाइड हो जाता है हमारे कर्मास पे, इन सब चीजों पे, तो वो मूलांक हो गया और भाग्यांक हमारा पूरा नंबर हो गया, जो कि हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स है, जैसे मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, ये सब के बारे में बताते।
3: तो ये बताइए कि जो अंक ज्योतिष है इनका क्या कोई वैज्ञानिक आधार है या सिर्फ एक ये ट्रेडिशन है और आध्यात्मिक विद्या मानी जाती है, और आज के समय में लोग अंक ज्योतिष का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं?
4: हाँ जी, तो अंक ज्योतिष का वैज्ञानिक आधार जरूर है, क्योंकि जहाँ नंबर्स हैं वहाँ वो प्लैनेटरी, जैसे हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं वो भारतीय अंक ज्योतिष है जिसमें कि हम प्लैनेट से उसको कनेक्ट करते हैं। तो अब प्लैनेट में हो गया एस्ट्रोनॉमी, तो वो अपने आप साइंस हो गई, खगोल विज्ञान हो गया, साइंस हो गई, मैथमेटिक्स है उसमें, क्योंकि हम नंबर्स की कैलकुलेशन दशा, महादशा, अंतरदशा निकालने के लिए करते हैं, तो वो मैथ्स हो गई। तो जो है खाली हम मूलांक या भाग्यांक के बेसिस पे लाइफ के डिसीजन नहीं बता सकते, जो हमारे इवेंट है उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए हमें उस टाइम पे क्या महादशा और क्या हमारा ईयरली दशा चल रही है वो ही देख के हम, खाली हम दो नंबर से अगर हम प्रिडिक्शन करेंगे मूलांक और भाग्यांक, वो प्रिडिक्शन के लिए सही नहीं है, वो नेचर के लिए, नेचर बताने के लिए सही है।
3: अच्छा अच्छा, तो किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं अगर कोई जानकारी चाहिए तो?
4: हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी से हम भविष्य बता सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम केवल इस चीज का इसलिए यूज करते हैं कि कोई हम डिसीजन लेने वाले हैं उस टाइम पे, अगर हमारा वो टाइम पीरियड, माना कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है,
3: अच्छा,
4: वो दशा हमारी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो हम उसे रोक सकते हैं, तो हम एक साल बाद हम उसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। तो ये एक लाइफ को गाइडेंस देता है कि हमें किस टाइम पे क्या करना चाहिए। जैसे वीजा है, कोई स्टूडेंट्स बाहर आते हैं या कोई घूमने जाता है, तो हमें पता है राहु का पीरियड चल रहा है एक साल के लिए, हमें उस पीरियड में वीजा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस होंगे।
3: अच्छा।
4: तो केवल हम उस टाइम के लिए थोड़ा सा अपना पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देख के इसमें कि कैसे करना है, बहुत डिटेलिंग में, और आधा ज्ञान खतरनाक नहीं, फैटल होता है। तो अगर बहुत लोगों को होता है कि केवल आजकल हो गया है कि मूलांक और भाग्यांक पे प्रिडिक्शन दे देते हैं।
3: देखिए एक सवाल आ गया दर्पण फोरम में, सब श्रोतागण बहुत ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं क्योंकि सबको रुचि है और सब लोग फैक्ट जानना चाहते हैं। तो विवेक शर्मा जी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग द सेम मूलांक एंड भाग्यांक इन न्यूमरोलॉजी?
4: हाँ जी, वो सब कॉम्बिनेशंस का है कि अगर हमारे पास माना कि मूलांक 2 है और भाग्यांक पे 2 है, तो हमें 2 नंबर की क्वालिटीज देखनी होंगी कि इमोशनल है। तो जब हमारे पास मूलांक एंड भाग्यांक दोनों में ही मल्टीपल 2 आ जाएगा, यही होता है कि मल्टीपल नंबर्स का अलग इफेक्ट होता है, तो वो ओवर इमोशनल बना देगा। ओवर इमोशनल जॉब में भी थोड़ा सा ये होता है कि अगर ओवर इमोशनल होंगे तो इमोशनल होके डिसीजन
3: मतलब डबल हो जाएगी,
4: डबल हो जाएगी। ऐसे ही 2 नंबर वालों की जो क्वालिटी होती है कि वो अपने पेट में कोई बात नहीं रख पाते।
3: अच्छा।
4: तो अगर वो नहीं रखेंगे ऑफिस के मैटर में, तो फिर क्या होगा कि अगर वो अपने सीक्रेट्स बता देंगे या शेयर कर देंगे
3: जी,
4: तो उनके लिए खराब भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल नंबर्स का है।
3: अच्छा, ये बहुत ही रुचिकर बात आपने बताई। अब ये बताइए कि अंक ज्योति या न्यूमरोलॉजी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है और लोगों को इसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए?
4: हाँ जी, तो अंक ज्योति सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि कुछ लिमिटेशंस हैं अंक ज्योतिष की, जैसे कि सेम डेट में बॉर्न हुए लोग सब एक जैसे नहीं होते। जैसे कि मोदी जी हैं तो 17 सितंबर को उनका बर्थडे है, पर जो 17 को पैदा हुए हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: तो ऐसे ही हमें और नंबर्स को देख के देखना है कि इस टाइम पे इसका इफेक्ट क्या है। इसमें अंक ज्योतिष का जो ये वैदिक वाला है, इसमें हम ये देखते हैं कि ग्रिड में कितने मेल नंबर कितने फीमेल नंबर है। अब अगर ज्यादा फीमेल नंबर होंगे तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा पजेसिव बना देगा, है ना, और ज्यादा इमोशनल बना देगा। या ज्यादा मेल नंबर हैं तो वो ईगो ले आएंगे।
3: देखिए, बहुत अच्छी बात। एक और सवाल आ गया, आपको रोक रही हूँ मैं।
4: हाँ।
3: यतिन जी पूछते हैं कि डेस्टिनी जो है इसका क्या महत्व है?
4: हाँ जी, तो डेस्टिनी जैसे
3: सवाल है कि क्या डेस्टिनी भी कोई चीज होती है?
4: हाँ बिल्कुल, डेस्टिनी नंबर है हमारे फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल।
3: अच्छा।
4: जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने लाइफ के इवेंट को देखना होता है। जैसे मैंने बताया 30 साल या अगर मैरिज हो गई है तो उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर का यूज करते हैं। आपने अक्सर
3: अच्छा।
4: सुना होगा कि लोग कहते हैं अगर लड़का या लड़की है डेट कर रहे हैं और फिर शादी हो गई तो कहते हैं तुम शादी के बाद बदल गए हो।
3: अच्छा।
4: क्यों बदल गए हो? डेस्टिनी नंबर का इम्पैक्ट आया, थोड़ी मैच्योरिटी आती है एज के, 30 की एज के बाद, तो वो अलग तरह से वर्क करता है हमारा डेस्टिनी नंबर। साथ में हम उसमें लाइफ के डिसीजन, किस प्रोफेशन में जाएंगे, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई हमें हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं।
3: अच्छा।
4: साथ साथ ये हेल्थ में ये भी बताता है वात पित्त कफ जैसे जो भी हमारी बॉडी की प्रकृति है, कौन से नंबर की कौन सी है। अगर हमें कफ है तो एल्काइन फूड लेना चाहिए।
3: अच्छा।
4: या वात है तो हमें सीट्रस वाले फूड लेने चाहिए। इस टाइप की चीजें भी हम ज्योतिष, और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते कि बड़ी बीमारी को हम नहीं रोक सकते, पर अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी के ये प्रकृति है तो हम स्टार्टिंग से उसको फॉलो करके चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे 4 का ईयर चल रहा है राहु का एक साल के लिए, तो हमें पता है कि उस टाइम पे विटामिन B12 एंड D की कमी रह सकती है बॉडी में। मैं खुद चेकअप करवाने गई और डॉक्टर ने कहा आपको होगी नहीं ऐसी, क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा है। जब टेस्ट किया तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए, B12 कम निकला।
3: अच्छा।
4: तो कई बार अब ये नहीं पता कि ये कैसे होता है, बट ये होती हैं चीजें। तो हमें वो चीजों का पहले से ही कि हमें ये वाला ईयर आ रहा है हमें इसका ध्यान रखना है और मिथ में नहीं पड़ना, क्योंकि हुई है वही जो राम रच रखा कहते हैं ना कि होगा तो वही जो कि भगवान ने,
3: लेकिन उसको थोड़ा उसका उपाय कर सकते हैं।
4: कर्मा जो है वो हमारा इसको रोक सकता है, और इस कर्मा के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी।
3: जरूर सुरुचि जी, देखिए क्वेश्चंस की, प्रश्नों की बौछार हो रही है हमारे दर्पण फोरम पे, तो इसका मतलब लोग इस टॉपिक को पसंद कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ये बताएंगे कि सुरुचि जी ने कैसे ये पढ़ाई की और कितना डिवोशन है, ये प्रैक्टिशनर हैं अंक ज्योतिष की और टारो रीडिंग की प्रैक्टिस करती हैं। इनके नंबर भी देंगे, इनके डिटेल बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सुमन कल्याणपुर जी का एक और प्यारा सा गीत सुनेंगे। और श्रोताओं, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सुरुचि जी हमें बताने जा रही हैं कि 1 से 9 नंबर जो है उनके बारे में थोड़े थोड़े शॉर्ट में वो प्रेडिक्शन देंगी। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो नेचुरली आप इनसे संपर्क कीजिए और अपने बारे में जो है ना विशेष स्पेसिफिक रीडिंग कराएंगे, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी जनरल बातें हमें बताएंगी अपने अगले जो है जो हमारा सेक्शन होगा। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश. सो श्रोताओं, हमारा जो दो टिकट्स वाले जो प्रोग्राम है वो जारी है, और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए. जो है हम दो टिकट्स देंगे. ये शो जो है गाता रहे मेरा दिल, प्रेजेंट्स बाय केदारनाथ, और ये होगा 4 जुलाई को सैटरडे 6 PM. और ये वेन्यू जो है वो है द रिजेंसी फंक्शन सेंटर ओबन.
2: श्रोताओं, जो पहेली रखी है सुनील जी ने, और टिकट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. शो तो बहुत अच्छा है सुरुचि जी. और आपको ये बता दूं श्रोतागण कि आज जो भी प्रश्न आप भेज रहे हैं, भले ही वो अंक ज्योतिष से रिलेटेड हो या अगले कार्यक्रम से रिलेटेड हो, हम सबको काउंट करेंगे और उसमें से जो है दो नाम हम निकालेंगे. तो आपको मिला रहे हैं हम अंक ज्योतिष विशेषज्ञ सुरुचि थेपलियाल जी से, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है सुरुचि जी, कि लोग जो हैं उत्सुक हो रहे हैं कि वाकई. हम तो बस व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं. आपको बताएं कि मेरा नंबर 7 है और मेरी बेटी का नंबर जो है वो 16 है, तो वो भी 7 होता है. तो व्हाट्सएप में जो दिखाता है उसमें ये पूछता है कि बताता है मेरी जो भी जो है ना गुण अवगुण हैं, कि 7 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है. तो वही चीज़ें मैच करनी चाहिए मेरी बेटी से भी, उसका भी 7 है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल विपरीत हैं कई चीज़ों में. कुछ समानताएं हैं लेकिन बहुत चीज़ों में विपरीत भी हैं. तो इसके पीछे क्या वजह है आप बताइए.
3: इसके पीछे ये वजह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रिड में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो पूरे नंबर्स हैं वो उससे मैच करते हों. हो सकता है, जैसे मैंने मेल और फीमेल नंबर की बात की थी, हो सकता है कि आपकी ग्रिड में कुछ फीमेल नंबर्स हों जो आपको इमोशनल बनाते हों, और आपकी बेटी के ग्रिड में हो सकता है कुछ मेल नंबर हों जो इगोइस्टिक या ऐसनाते हों, और आपकी बेटी के ग्रिड में हो सकता है कुछ मेल नंबर हों जो इगोइस्टिक या ऐसे बनाते हों. अच्छा. कि डिसीजन

0: का 7 है वो 1 और 6 दोनों की क्वालिटी मिला के बनेगा, तो भले ही 7 की उसमें प्रोमिनेंट होगी क्वालिटी, पर 1 और 6 की भी क्वालिटी देखने को मिलेगी, तो ये डिफरेंस।
1: अच्छा, तो श्रोताओं ये सिखाती भी हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए कि कितना वर्ष लग गया आपको इसकी पढ़ाई करने में और कैसे आप सिखाती हैं?
0: हाँ जी, तो जब मैंने सब शुरुआत की थी एस्ट्रो ये न्यूमरोलॉजी की, तो मैंने आज से 5 साल पहले की थी। स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सी न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जैसे चाइनीज़ में है, लोशु ग्रिड है, या और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती थी, मैंने सब सीखी। फाइनली मुझे जो पता चला कि मेन लोगों को क्या चाहिए, किसी को अपना नेचर नहीं पता करना, किसी को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता करनी, एक्चुअल में क्या है, उन्हें प्रिडिक्शन चाहिए। अब माना कोई हमारे पास आता है और वो पूछता है कि मेरी जॉब कब लगेगी। अच्छा। अब हम उसको बता रहे हैं, नहीं तुम्हारी ग्रिड में तो ये है, सैटर्न है या राहु है, उसे क्या मतलब है कि राहु है या सैटर्न है, वो पूछ रहा है कि मुझे आंसर दो कि मेरी जॉब कब लगेगी। तो हमने ये देखा कि जब हम इससे करते हैं, जो इंडियन न्यूमरोलॉजी है जिसको कि लोग वैदिक कहते हैं, जो कि वैदिक है नहीं क्योंकि वेदों में कहीं भी न्यूमरोलॉजी का जिक्र नहीं है।
1: अच्छा।
0: पर लोग कहते हैं, तो हम इसको इंडियन न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हमने जो प्लेनेट से उसको कनेक्ट करके प्रिडिक्शन करी कि क्या होगा, कब होगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। अब हम कह रहे हैं शादी होनी तो थी, पर अभी इसका मंगल चल रहा है या ये मांगलिक। अच्छा। है उस वही रेड फ्लैग है कि आपको वो बता रहे हैं कि अब इसका उपाय करो। अच्छा। नहीं हमें उपाय में पढ़ना, वो पूछ रहा है कि हमें सही बताओ कि कब होगी, तो अच्छा। हमें सटीक आंसर देना है।
1: शॉर्ट एंड स्वीट।
0: हाँ, फिर हम वैदिक में गए और हमने ये सीखा कि कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, तो मुझे डिफरेंस पता चला। तो फिर मैंने लोगों तक ये पहुंचाना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो आज मेरे 4 बैच न्यूमरोलॉजी के चल रहे हैं।
1: आप उनको पढ़ा शिक्षित कर रही हैं?
0: पढ़ा रही हूँ, और पर बैच मतलब 50-60 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो कुछ इंडिया से, कुछ ऑस्ट्रेलिया, यूएस।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें रुचि लोगों की बढ़ रही है और सीखना चाह रहे हैं। तो यदि कोई सीखना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, तो आप अपना नंबर बता दीजिए श्रोतागण को, बताना चाहें तो।
0: हाँ जी, अगर कोई संपर्क करना चाहता है, कोई इस चीज में इंटरेस्टेड है और पहले शुरू में जानना चाहता है कि ये क्या है, तो मैं एक सेशन कल भी ले रही हूँ 4 अच्छा। से 5 बजे तक, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिस क्योंकि जब
1: अच्छा,
0: तक किसी
1: है
0: को,
1: ये कल का सेशन, जी।
0: क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं होगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या, वो सीखेगा कैसे। मार्केट भी जाते हैं तो 10 चीजें देख के हम लेते हैं, तो इसके बारे में हमें नहीं पता, हमें डिफरेंस नहीं पता, तो कैसे करेंगे। तो हमने कल का सेशन रखा है, जो भी कॉन्टेक्ट करना चाहता है वो मुझे नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं बता देती हूँ, 0415578569।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने नंबर दिया है श्रोतागण, ये हम नंबर डाल देंगे अपने दर्पण फोरम में, तो आप संपर्क कर सकते हैं सुरुचि जी से। तो श्रोताओं अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सुरुचि जी अब हमें बताने जा रही हैं मूलांक जो हैं। अपने अपने नंबर जोड़ लीजिए पहले, हैं कि अगर आपका जन्म जो 15 को हुआ है तो आप 5 और 1 जोड़ लीजिए और वो नंबर 6 हो जाएगा, और बिल्कुल 1 से 9 नंबर का आप बारी बारी से बहुत संक्षेप में जो है कुछ प्रेडिक्शंस बताइए।
0: हाँ जी, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ सारे श्रोताओं को कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास का जरिया, ये नंबर्स का खेल है। और जैसे हमारे कर्मांश होते हैं, तो उसमें 3 टाइप के कर्मांश होते हैं, एक संचित कर्मा, प्रारब्ध और क्रियामान। तो संचित कर्मा जो हमारे कई जन्मों के इकट्ठे होने का एक बस्ता सा है, बैग उसके अंदर भरे हुए हैं।
1: अच्छा।
0: उसमें से प्रारब्ध जो हम इस जन्म में हैं, जो लेके आए हैं, वो निकला है। अच्छा। इस जन्म के लिए हमें प्रारब्ध से जो मिला है वही होगा। और उसके बाद जो ऐसा नहीं है कि हमने जो इस जन्म में कर्म नहीं किए करे हैं उसका हमें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, वो क्रियामान कर्मा में होगा, वो हो सकता है हमें इस जन्म में मिल जाए, नहीं तो वो ऐड हो जाएगा संचित कर्मा में। तो जो प्रारब्ध है उसके बेस पे कुंडली हमारी बनाई जाती है, जिससे कि एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि ये तुम्हारा होगा, इस टाइम पे होगा। पर जो क्रियामान कर्म है वो कैसे देखेंगे, वो कहीं कुंडली में नहीं लिखा होता। हाँ, वो कुंडली में नहीं लिखा होता, वो हम न्यूमरोलॉजी से प्रश्ना के थ्रू डिवाइन से पूछते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये वर्क कैसे करता है। अब खाली नंबर्स का इसीलिए हमने प्लैनेट्स के साथ करके किया है, पर फिर भी हम यही कहते हैं कि ये सब कर्म का फल है। क्यों, आजकल लोग कहते हैं मोबाइल नंबर्स का

0: ये नंबर कर दो तो अच्छा होगा, ये इस नंबर का मोबाइल नंबर ले लो।
1: अच्छा।
0: क्या भगवान राम के पास मोबाइल नंबर था? नहीं, उन्होंने भी कर्म ही किया, शस्त्र उठाए और तभी सीता जी का पता चला। या फिर हाँ, नंबर्स का महत्व है, जैसे कि कृष्ण भगवान अष्टमी को पैदा हुए।
1: अच्छा।
0: 8 नंबर स्ट्रगल का है उनकी फुल लाइफ, तभी भी हम मतलब हिंदी मंथ के हिसाब से भी देखते थे।
1: अच्छा।
0: कि 8 नंबर है अष्टमी, तो उनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल रही। इवन
1: अच्छा।
0: जब वो उनकी डेथ भी हुई तो तीर से, ऐसे ही अच्छा। रामनवमी को हुए थे। तो 9 नंबर वालों का ये होता है कि गुस्सा नहीं आता, जब आएगा तो बहुत तेज, तब उन्होंने कहा सागर को भी सुखा देंगे। तो ये नंबर्स के महत्व हैं जो आज से कई सालों से हो पता चल रहे हैं, पर कोई सही तरीके से इसको बताने वाला नहीं है।
1: चलिए,
0: तो अब मैं आपको मूलांक और भाग्यांक के नंबर्स,
1: तो मूलांक नंबर 1 पर आते हैं।
0: हाँ जी, तो 1 नंबर वाला, नंबर 1 स्टार्टिंग का नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है, 0 का इसमें कोई महत्व नहीं होता। तो 1 नंबर वाले में मैनेजमेंट क्वालिटी होगी जिसका 1 नंबर है, और उसकी मतलब गवर्नमेंट जॉब जैसे होगा, या पॉलिटिशियन के चार्ट्स में आप ज़्यादा देख सकते हैं जिनमें कि मैनेजमेंट पावर होगी। जैसे मैंने बताया कि 17 के मोदी जी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पर 1 वाली क्वालिटी उसमें रहेगी। तो मैनेजमेंट पावर या ईगो,
1: कैसा स्वभाव रहेगा,
0: हाँ ईगो होगी, मैनेजमेंट पावर होगी, किसी चीज़ को मतलब खुद से हैंडल करने की ताकत होगी। पर वो भी खाली 1 नंबर से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, अगर मल्टीपल 1 होगा, डेस्टिनी 1 है या बेसिक 1 है, सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है।
1: हाँ, तो हम चलिए हम जल्दी जल्दी सिर्फ एक एक नंबर की बात करते हैं। तो हम नंबर 2 पे आते हैं।
0: नंबर 2 इमोशनल नंबर है, इमोशंस होंगे उसमें, और प्यार ही प्यार बेशुमार जैसे कहते हैं। तो
1: अच्छा।
0: नंबर 2 के पास बस वही है, इससे ज़्यादा मतलब पैसों का नंबर नहीं है, इमोशंस का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, कुछ क्रिएटिव करने का, ये सब चीज़ें उसमें होंगी।
1: चलिए नंबर 3।
0: नंबर 3 जुपिटर गुरु का नंबर है, पढ़ाने का, टीचर का, जो काउंसलिंग करते हैं, इन सब के लिए नंबर 3 नंबर है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यू रहती है, किसी को धोखा नहीं देता।
1: चलिए नंबर 4।
0: राहु का नंबर है नंबर 4। राहु का नंबर इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, साथ में थोड़ा सा जिनका नंबर 4 है उनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ज़्यादा टूट फूट होती है, ये सब देखा गया।
1: अच्छा, नंबर 5।
0: नंबर 5 है मरकरी का, पैसों का नंबर है, उनके दिमाग में हमेशा मनी मनी चलती रहती है, अपना सपना मनी मनी।
1: अच्छा।
0: तो उनको पैसे मतलब उससे ज़्यादा ऊपर रखते हैं।
1: अच्छा,
0: हार्ट से।
1: अगला नंबर, नंबर 6।
0: नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, लस का नंबर है, उसमें देखा गया अगर वही 6 नंबर मल्टीपल हो जाता है, तो अगर लड़के हैं तो लड़कियां पीछे पीछे भागेंगी, अगर लड़कियां हैं तो लड़के इंटरेस्ट।
1: अरे वाह, 6 नंबर वाले श्रोतागण बहुत ध्यान से सुने।
0: और लग्जरी रहेगी, पर मल्टीपल और उसका अलग अलग महत्व है।
1: अच्छा, अब हमारे नंबर 7 पे आ जाइए।
0: नंबर 7 है अध्यात्म का नंबर, लक का नंबर, ट्रैवल का नंबर, मल्टीपल होता है तो ट्रैवल करवाता है, अगर एक बार 7 है तो हाँ हमेशा लक उनका साथ देगा, किसी भी जगह में स्टक नहीं होंगे, और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ऐसे लोग।
1: अच्छा, नंबर 8।
0: नंबर 8 है ऑब्स्टिकल्स का नंबर, और मतलब वो किसी के साथ अन्याय, जैसे 3 और 8 वाले हैं, नहीं होने देते और खुद ही उठ के आगे आ जाएंगे, बोलेंगे। और दूसरी चीज़, अगर ये मल्टीपल हो जाते हैं तो वो फॉरगेट भी नहीं करते और फॉरगिव भी नहीं करते।
1: अच्छा।
0: अगर किसी से वो हो जाए, नाराज होते नहीं हैं, थोड़े से इमोशनल होते हैं, पर ये दिखाते नहीं हैं, ये जिसको कहते हैं कि बाथरूम में जाके रोते हैं।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा नंबर है, पर थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, ये है नंबर।
1: जी, नंबर 9।
0: नंबर 9 है मंगल का, मार्स, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, करेज ज़्यादा रहता है, सिंगल 9 रहता है तो करेजियस रहते हैं, वहीं अगर मल्टीपल हो जाता है, जैसे कि ट्रिपल टाइम्स हो जाता है, तो सर्जरी का योग बना देता है।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए इनका कहते हैं कि इनमें काफ़ी एनर्जी रहती है, इन्हें अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी चाहिए एक्सरसाइज के थ्रू।
1: बहुत है। तो ये अगर चूज़ करना हो तो सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होता है?
0: कहते हैं कि नंबर्स को चूज़ करके हम जैसे बर्थ में या किसी चीज़ में हम यूज़ करते हैं, पर सिंगल नंबर कभी भी ऐसे वर्क नहीं करता है, इसलिए कोई भी नंबर, सारे नंबर अच्छे हैं और सारे नंबर बुरे।
1: अच्छा।
0: हैं, तो उनके सारी ग्रिड देखते
1: हैं। चलिए क्विकली जो सवाल आ रहे हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। राजगर्ग जी पूछते हैं कि बहुत ज्ञानवर्धक सुरुचि, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते रहिए, तो इनका कॉमेंट है, लेकिन जो है सवाल हमारे पास है उस बारे में हम जानना चाहते हैं। राजगर्ग जी पूछते हैं, क्या आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं या ये फिक्स है और बदला नहीं जा सकता?
0: ये मैंने बताया था, जैसे कर्मा से, क्रियामान कर्मा से हम चेंज कर सकते हैं, पर क्रियामान कर्मा से हम इस लाइफ का जो चेंज कर सकते हैं वो केवल स्पिरिचुअलिटी से चेंज कर सकते हैं। हमें मंत्राज या पूजा इन सब चीज़ों में अगर हम जाते हैं तो यस, हमारे को वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका कम पता चलेगा या उन प्रॉब्लम से हमें रास्ता मिल जाएगा।
1: जी, राजीव निगम जी पूछते हैं कि प्लीज़ टेल द इम्पैक्ट ऑफ द मूलांक एंड भाग्यांक इन टुगेदर एंड इफ दे आर डिफरेंट डू दे इम्पैक्ट ऑन द पार्टनर वाइव्स डाटा इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ।
0: हाँ, तो सब ये हैं दो तीन क्वेश्चंस का मिक्सचर है।
1: अच्छा।
0: मूलांक और भाग्यांक का यस डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, और अगर डिफरेंट है मूलांक भाग्यांक तो जैसे मैंने बताया प्लैनेट से जोड़ के देखते हैं, जैसे कि सूर्य और शनि अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन, उसकी युति क्या फ़र्क देगी, या कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से एनिमिटी हैं, ये सारी चीज़ें देख के हमें कि किस टाइम पर क्या नंबर चल रहा है उसी।
1: राजीव जी आपसे कहूँगी कि आप जो है पर्सनली रीडिंग कीजिए सुरुचि जी के साथ डिटेल्स के लिए। अमिता श्रीवास्तव जी पूछती हैं व्हाट आर फीमेल नंबर्स और मेल नंबर्स।
0: हाँ जी, जैसे 2 नंबर है ये फीमेल नंबर में आता है, 8 नंबर है, इनमें जो फीमेल नंबर्स होते हैं उनमें इमोशंस ज़्यादा होंगे या क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, और मेल नंबर्स हैं उनमें ईगो होगी, मैनेजमेंट होगी हर चीज़ को करने का कि खुद कर लेंगे। तो मेल नंबर 1 है, जैसे सन का नंबर है 3 है और 9 है, 3 मतलब जुपिटर, 9 मतलब मार्स, तो जिनके पास ये नंबर हैं उनको मतलब कहीं किसी भी पोजिशन में गिरेंगे तो उठ जाएंगे, जबकि फीमेल नंबर्स है उन्हें अंधा चाहिए होता है रोने के लिए।
1: तो प्रदीप जी भी फिर पूछते हैं कि मेल नंबर और फीमेल नंबर क्या होता है, आपने बता दिया। शैलजा जी पूछती हैं कि सुरुचि जी ये नंबर जो आपने बताए वो अंग्रेजी बेस्ड हैं या हिंदू तिथियों के अनुसार हैं।
0: हाँ जी, तो ये हैं तो इंग्लिश बेस्ड, क्योंकि आजकल हम जब हमारा बर्थ हुआ है तो हम उसको इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो ये इंग्लिश कैलेंडर पे ही वर्क करता है। पर हाँ, हम तिथि के हिसाब से भी अगर नेचर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैच करती हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। देखिए समय कम है और श्रोतागण से यही कहूँगी कि आप जो है सुरुचि जी से जो है आप खुद मिलिए और जो भी आपके पर्सनल सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। एक और सवाल आया है विवेक शर्मा जी, वो पूछते हैं कि सुरुचि जी यू एक्सप्लेन दैट न्यूमरोलॉजी इज़ कंटेक्चुअल येट मैनी पीपल सी इट एज एब्सोल्यूट, हाउ डू यू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस अराउंड सच अ नॉनसेंस सब्जेक्ट।
0: देखिए वैसे इसमें है अंक ज्योतिष में बहुत सारा गुमराह करने के लिए बहुत मटेरियल मिल जाएगा कैसे यूज़ करना है, पर ये अपने ऊपर होता है कि हमें क्या उस नंबर्स की रिसर्च से कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं हमारे अंदर, क्या हमने एक दो बार, जैसे बहुत लोग नहीं मानते कि नंबर्स पर नंबर्स होते हैं और वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, वो चीज़ गलत है कि जो कार का नंबर या मोबाइल नंबर या और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आज से भाई अगर सचिन तेंदुलकर जी थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि छक्का लगाते टाइम कि मेरे पास वो मोबाइल नंबर था कि नहीं था, तो वो सब चीज़ें बेकार हैं। पर हाँ, अंक का, नंबर्स का, जैसे प्लैनेट्स से करते हैं तो प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में असर पड़ता है, जो कि हम लोग केवल ये इंडियन न्यूमरोलॉजी में है जो कि हम प्लैनेट से कनेक्ट करके देखते हैं, बाकी जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है उसमें वो नंबर केवल नंबर्स से कनेक्ट करके देखते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात, और हमें यहीं अब जो है इसे विराम देना पड़ेगा, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। अगर श्रोतागण आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि वो और जानकारी ले सके।
0: हाँ जी, तो फिर मेरा नंबर है 0415578569, और जो भी इंटरेस्टेड हैं वो दर्पण रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं शाम तक, तो उनको मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कल जो होने वाला है हमारा 4 to 5 का सेशन उसमें कुछ
1: ऑनलाइन
0: है जूम पे, और उसके बारे में कुछ भी कोई उनको न्यूमरोलॉजी का पूछना है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए उस बारे में भी कल के लिए ये फ्री है, तो आप लोगों को जिसको भी पूछना है, अपने बारे में जानना है, कुछ इवेंट के बारे में, तो आप कर सकते।
1: सुरुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत सी बातें सुलझाई जो जो है हमें अंत ज्योतिष के बारे में नहीं पता था। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा, दर्पण की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार जी।

श्रोताओं, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुमन जी ने गाए जो दिल में बस गए। लेकिन आइए अब बातचीत करते हैं डॉक्टर बशीत बद्र जी की। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए श्रोताओं ये बताना चाहूँगी कि आज उर्दू अदब की दुनिया कुछ और उदास है। शब्दों की दुनिया का एक चमकता सितारा, मोहब्बत, इंसानियत और रिश्तों का शायर डॉक्टर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहा। 28 मई 2026